0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
1: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
0: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथा थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, सञ्चालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638387।
6: हेलो बहिनी, कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सिजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान 60 मा उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
0: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 मा किने।
6: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ। त्यो पनि सिजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि। त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मा मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ। त्यो पनि वाईवाई सिजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल, साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली, सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848442।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू हासक खोज खबर में यहां उग्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती भलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज हिन्दू नारी हुक्रन के महान त्योहार हरितालिका तेज पर्व महादेव के पूजा आराधना करके मनाई थी। कैलाली के तीन पालिका में जापानीज इंसेफ्लाइटिस विरुद्ध के खोप अभियान संचालन हुई थी। जानकी गांव पालिका के वाड़ा में रलक के युवा मंच से प्रधानमंत्री राहत कोष में 53,000 जमा और एशियाली खेलकूद के लाख नेपाल के क्रिकेट टोली घोषणा। आज भाद्र शुक्ला तृतीय के दिन हिन्दू नारी हुक्रन के हरितालिका तीज पर्व मनाइति बाट यी दिन देवदिदेव महादेव के पूजा आराधना करके व्रत बैठना परम्परा रहती आयल बा। आज के दिन पशुपतिनाथ लगायत के देशभर के शिवालय में भक्तजन हुक्रन के भीड़ लगती रहल बा। शास्त्र अनुसार भाद्र शुक्ला तृतीय के हरितालिका व्रत लेना हुक्रन के सुख शांति और कल्याण प्राप्त होना विश्वास रहल बा। विवाहित महिला हुक्रा अपन थरिया के दीर्घायु, अविवाहित महिला हुक्रा सुयोग्य वर के कामना करती ई व्रत बैठना चलन बा। यद्यपि शास्त्रीय मान्यता अनुसार पुरुष हुक्रन के फे ई व्रत लेपना उल्लेख कर गिल बा। सत्य युग में हिमालय पुत्री पार्वती के गौरी घाटमा

0: तपस्या करके महादेव फे समेत पति पैकलाक पिता हिमालय के विष्णु संगे पार्वती के भोज करैना खोजल पासे संग्रह उकरण पार्वती हे समेत लुका के सुरक्षित स्थान में धरने वही स्थान में पार्वती से निर्हर व्रत बैठके महादेव हे प्राप्त करल विश्वास करल बा इदिन पार्वती के संग्रह उकर हरण करल कारण संस्कृत में हरित हरण ओ समेत अलिका संघरिया शब्द से समेत हरितालिका शब्द बनलक विश्वास रहलबा ई व्रत निरहर कोनो फे खैना चीज नै खाके जलहार केल समेत जल मात्रा ओ समेत फलहर फलफूल करके समेत बैठना चलन रहती आयलबा। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 में रलक युवा मनसे रसुआ के बाढ़ी प्रभावित हुईलक हुकरण केलक राहत कोष में रकम पठागिल बा। जानकी गांवपालिका 9 के युवा हुकरण के तमाम क्षेत्र मनसे नगद रकम सहयोग उठाके 53,797 रूपया समेत प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करल के हुए। बाढ़ी प्रभावित हुकरण सहयोग पुगे गई के रकम जमा करलक कोषमा पठाइल युवा मंच के संयोजक ओम प्रकाश चौधरी जानकारी देले बाटै। देशभर हाल मनसूनी वायु के प्रभाव कायम बा। देशभर मौसम समेत फेरबदल होते रहल। महाशाखा के अनुसार न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान के कुछ दक्षिण ओर सरलक बटागिल बा। यद्यपि ई बेला देश के अधिकांश भूभाग में सामान्यतया मौसम बदलती बा। कोशी और बागमती प्रदेश के कुछ स्थान में मध्यम वर्षा हुई बाकल से हाल दिनभर देशभर समेत मौसम साधारणतया बदलना कहलबा। लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में समेत ढेर स्थान में मेघगर्जन और चट्टान सहित मध्यम वर्षा और हिमपात के संभावना हुई सकने बा। तराई क्षेत्र में बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान में मध्यम पानी पर्ना अनुमान करल बा। मधेस और कोशी प्रदेश के तराई भेग में ढेर ठावा समेत चट्टान सहित वर्षा हुईना कहलबा। कोशी और कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा के अनुमान समेत करलबा। बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के समेत पहाड़ी तथा तराई क्षेत्र के समेत कम स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल। महाशाखा से समेत आवश्यक सतर्कता अपनैना आग्रह करते आयल बा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आंखा का रोगीहरूलाई अत्यंत जरूरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
3: तर एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
2: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
2: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तो यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: थारू समुदायकै ऐतवारी पर्व मनाइलबाटै खास करके थारू समुदाय हुक्रा कृष्ण जन्माष्टमी पाछकी शुक्ल पक्षकी पहिला अटवारके दिन व्रत बैठकी पर्व मनाइन चलन बा। अटवारके रलक व्रत है समझके मनाइन रलक उठ्छ यी पर्व के नाउँ ऐतवारी कहलबा। ऐतवारी पर्वमा भीमके पूजा गर्न चलन बा। अटवारके दिन भीमके थारू समुदाय हुक्रा भारी गुण लगैलक सहयोग गर्लक सम्झनामा थारू समुदाय से यी पर्व मनाइटी ऐलक हो। अटवारी के आगे दिन थारू समुदाय हुक्रा दर खाइकलक मच्छी मार जैना मीठ मीठ खैना दोना तपरी बनैना बनुआ जैना पट्टा संकलन करना समेत तयारी गर्थे। अटवार के समेत पर्वमा रात के व्रत बैठना व्रतालु हुक्रा दर खैना चलन रहल बा। व्रतालु हुक्रा समेत बैठके व्रत बैठलक दिन हे व्रतालु हुक्रा घर के एक थो कोनुआमा बहरीमा समेत लिपोट करके रोटी पकैना चलन बा। रोटी नै उल्टाके पहिल रोटी पकैना समेत चलन बा। औ भीम केलक पूजामा चढ़ैना फे चलन रहती आयल बा। रोटी पका सकल पाछे साँझ के व्रताल हुक्रा लहाके लहा खोर करके रोटी फलफूल केरा स्याउ दही खीरा लगायत के खैना चीज खैना। औ दिदी बहिनी हुक्रन केलक छुट्याल पूजा करके समेत खैना चलन बा। व्रताल हुक्रा व्रत बैठ सकलक पाछ और दिन समेत बिहान के तमाम मेर के सोमवार के दिन परिकार बना के गेड़ागुड़ी उसक पकौड़ी उसक तीन चार थरी के समेत तरकारी उसक पकैना चलन रहल बा। उसी के पका सकल पाछ व्रताल हुक्रा लहा खोर के अपन दीदी बहिनी हुक्रन के भाग छुट्या के पूजा करके खैना चलन बा। खाना खासेकल पाछे सोमवार के दिन समेत अग्रासन जैना चलन बा। दादू भैया हुक्रा अपन दीदी बहिनी हुक्रन अग्रासन देह जाइबे दादू भैया दीदी बहिनी हुक्रन के बीच में माया प्रेम और सद्भाव बढ़ना फे समेत विश्वास रहल बता गिलबा। थारू समुदाय ई पर्वाहे धूमधाम के साथ आज सम्पन्न करतीबा। कैलाली के तीन थो स्थानीय तहमा जापानीज इन्सेफेलाइटिस विरूद्ध के खोप अभियान संचालन होना बा। जापानीज इन्सेफेलाइटिस के संक्रमण बढ़ती गये पाछे स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली से असोज एक गति से लेके खोप अभियान संचालन करल के हो। स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के प्रमुख रमेश कुमार से धनगढ़ी उपमहानगर पालिका लम्की चोहा नगर पालिका और घोड़ाघोड़ी नगर पालिका में ई अभियान संचालन करना जानकारी दे गेल बा। स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख कुवार के अनुसार घोड़ाघोड़ी और लम्की चोहा नगर पालिका में असोज एक गते से लेकर 7 गते सम तथा धनगढ़ी उपमहानगर पालिका में 8 से लेकर 22 गते सम खोप अभियान संचालन होना करवा। यह अभियान अंतर्गत 30 वर्ष उही से उपरक व्यक्ति उपरण जापानीज इंसेफेलाइटिस विरूद्ध के खोप लगैना। स्वास्थ्य कार्यालय के अनुसार धनगढ़ी में 1,02,479 घोड़ाघोड़ी में 39,059 और लम्की चोहा में 40,755 करके कुल 1,82,313 जहां है खोप लगाइन लक्ष्य लेल कुवार जानकारी दिले बाटें। कैलाली के दुईठो स्थानीय तह आज स्थानीय विदा देना निर्णय करल बा। कैलाली के टिकापुर नगर पालिका और जानकी गांव पालिका एक दिन स्थानीय विदा देना निर्णय करल के हो। हिन्दू नारी हुकरण के महान पर्व हरितालिका तीज पर्व हो। थारू समुदाय के अटवारी पर्व के अग्रासन कार्यक्रम रलक ओर से आज एक दिन विदा देना निर्णय करलक और स्थानीय तह से सूचना मार्फत जानकारी करायल बा। आस्टिकापुर नगरपालिका जानकी गाउँपालिका के सक्कु कार्यालय सरकारी कार्यालय शैक्षिक संस्था स्वास्थ्य संस्थामा स्थानीय विधा देहेलो संस्था से स्थानीय तह हुक्रा समेत जानकारी कार्यालय बाटै खोजखर माया घरी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुन टीवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
6: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
7: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली संचालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
8: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
9: महीने जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
8: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
1: श्री गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलाली को भक्तजनहरुका लागि सूचना
10: श्री गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलालीको आयोजनामा यही भदौ 30 गतेदेखि असोज 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम 2083 भव्य तथा सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण भक्तजनहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: श्री गणेश उत्सवका कार्यक्रमहरू
10: गणेश स्थापना र उद्घाटन कार्यक्रम 2083 भदौ 30 गते दिउँसो 3 बजे
1: भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट ज्यान गुमाएका र सम्पर्क विहीनको लागि हरेक दिन शान्ति पाठ हुने
10: विद्यालय स्तरीय नृत्य कार्यक्रम
1: हरेक दिन भजन कीर्तन र नृत्य कार्यक्रम
10: हरेक दिन बिहान योग कार्यक्रम
1: विसर्जन कार्यक्रम असोज 5 गते बेलुका 5 बजे
10: आयोजक श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम मूल समिति टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 नारायणपुर चौराहा कैलाली।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। भोटेको सीमा बाढ़ पाछे रसुवा जलविद्युत आयोजना के सुरुङ्गो भाग्नावशेष बेपत्ता हुक्रान के खोजीमा खटल विशेष उद्धार टोली फिर्ता फिटी रलक सेफेन नेपाली सेना हो बाँकी विदेशी टोली खोज तथा उद्धार के काम निरन्तरता देहलवा जटिल भौगोलिक अवस्था सुरुङभित्र जमल पानी उसक माटी तथा भारी चट्टान के कारण चुनौतीपूर्ण बनलक खोजमा चिनिया कोरियाली संयुक्त अरब युए के समेत टोली फिर्ता समेत हुईलबा नेपाली सेना भारतीय अस्ट्रेलिया के टोली भर समेत तमाम आयोजनामा परिचालित रहलबा। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार सुरुङ भित्र की खोजी प्राथमिकता देती अन्य भाग्नशेष समेत खोज तथा उद्धार है निरन्तरता देना तयारी करलबा। प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति समेत मात के अनुसार 22 मेगावाट की चिलिमे जलविद्युत आयोजना के सुरुङमा नेपाली सेना के 13 भारतीय टोली के 11 करके 14 जन के खोजीमा खटल बटागिल्बा सुरुङ भित्र करिब 700 मिटर समेत फोहोर हटैना काम हुइतिबा कलसै टनेलमा भारी उपकरण समेत पुगैना नेपाली सेना से चट्टानी भूभागमा ब्लास्ट करके पहुँच मार्ग तयार करलको उपकरण के पहुँच विस्तार हुइबा से थप खोजी करना सहज हुन अपेक्षा करगिल्बा। अफ्रीका के नाइजेरिया स्थित के लोगोसामा आयोजित अफ्रीका ब्रांड अवार्ड 2026 में टीकापुर के उद्योगी तथा व्यवस्थापक हिकमत थापा बेस्ट सीओ के समेत लीडरशिप अवार्ड प्राप्त करके सम्मानित हुए। गंगटे समूह अंतर्गत के डंगटे समेत सिनोट्रक वेस्ट अफ्रीका लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ थापा है। औद्योगिक व्यवस्थापन और नेतृत्व में पुगैना योगदान के आधार में ऊ सम्मान प्रदान करगिले खो। थापा विगत 20 वर्ष से लेके डंगटे ग्रुप में आबद्ध रहल बताइते आयल बा। मा समेत आगामी असोजमा हुइना 20 संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता केलाक नेपाली पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट टोली घोषणा गरलबा। नेपाल ओलम्पिक कमिटी के समेत दिपेन्द्र सिंह एरी के कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोली घोषणा हुइलेखो। टोली के और सदस्य रोहित कुमार पौडेल, सन्दीप लामिछाने, आसिफ शेख, कुशल भुटेल, आसिफ शेख, आरिफ शेख, उसके लोकेश बम, सन्दीप जोरा, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशन झा, कुशल मल्ला, नन्दन यादव, ललित नारायण राजवंशी, शेर मल्ला फेर हलबाट टोली के मुख्य प्रशिक्षक में स्टुअर्ट ल रहल बतागिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर ओराइल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। हिन्दू नारी हुक्रा आज नारी हुक्रन के महान त्यौहार हरितालिका तीज पर्व महादेव की पूजा आराधना करके मनाइए। भैराली के तीन पालिका में जापानीज इंसेफेलाइटिस विरुद्ध के खोप अभियान संचालन हुई थी। जानकी गांव पालिका के वाड़ा मरलक युवा मंच से प्रधानमंत्री राहत कोष में नगद 53,000 जमा हो। एशियाली खेलकूद के लग नेपाल के क्रिकेट टोली घोषणा। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुना सकबी। अब बेके खोज खबर से मै रतन चौधरी विदा हुई। तू सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुनते रह। विराम राम।
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
12: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
11: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
12: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
11: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
12: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
11: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
12: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
11: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
12: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
11: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुर।
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
11: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72।
13: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
12: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
14: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
15: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
14: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
16: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
17: जापानी इन्सेफलाइटिस रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अत्यन्त जरुरी सूचना।
18: जापानिज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने भाइरल रोग हो। यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ।
19: यो भाइरसबाट संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुँगुर बंगुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने त्यो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ। तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन। यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ।
18: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू
19: बेसरी टाउको दुख्ने,
18: उच्च ज्वरो आउने, बेहोश हुने,
19: घाँटी अररो कडा हुने,
18: कम्पन हुने,
19: पक्षघात हुने
18: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
19: जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बच्ने उपायहरू
18: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो।
19: हाँस कुखुरा सुँगुर बुङ्गुर जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढंगले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले पाल्ने गरौं।
18: घर बाहिर निस्कँदा खेतबारीमा काम गर्दा पूरा बाहुला भएको कपडा लगाऊ।
19: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने, पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरी दिने गरौं।
18: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौं।
19: सधैं झुल टाँगेर सुत्ने गरौं।
18: याद गर्नुहोस्, यो रोगबाट बस्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ। यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ।
20: स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
5: घर परिवार में सभी बिरानी आखिर स्वस्थ रह स्वस्थ व्यवहार को अपनाउनु पर्यो तर इति हुँदै पनि सबै एकनासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
6: मैले चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ हौ तलाई
5: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लाग्या लागे हुन्छ खानै सक्दैन
6: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टीकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
7: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
8: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ढकरोला रोड टीकापुर कैलाली

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज हिंदू नारी उकरण के महान त्यौहार हरितालिका तीज पर्वा महादेव के पूजा आराधना करके मनाईती। टीकापुर में हाथी से नागरिक उकरण सतैती। रात के हथिया गांव में पैंती रहलक पासे स्थानीय उकरण त्रसित। बार पाछे पुनर्स्थापना के लाख स्रोत की कमी हुई नई देना प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धता हो। कर्णाली प्रदेश सभा के दूसरा कार्यकाल के 8वां अधिवेशन अंत्य करना सिफारिश। आप पूरा खबर। आज भाद्र शुक्ला तृतीय के दिन हिंदू नारी हुक्र हरितालिका तीज पर्व मनाईती बाटे। ई दिन देव विदेव महादेव की पूजा आराधना करके व्रत वैष्णव परम्परा रहती आयल बा। आज के दिन पशुपतिनाथ लगायत के देशभर के शिवालय के भक्तजन हुकरन के भीड़ लगना चलन बा।

0: पार्वती के भोज करैना खोजल पाछे संगरिया हुक्रा पार्वती हे लुका के सुरक्षित स्थान न धरना हो उहे स्थान में पार्वती से निरहरा व्रत बैठ के महादेव हे प्राप्त करल विश्वास लेल बा ई दिन पार्वती हे संगरिया हुक्रा हरण करला कारण संस्कृत में हरित हरण ओस्तक अलिका कलक संगरिया शब्द से नई हरितालिका शब्द बनलक विश्वास करगिल बा। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 और 5 के तमाम गांव में हथिया सतैती बा। वार्ड नंबर 2 के सीतापुर वार्ड नंबर 5 के नुकलीपुर लगायत के क्षेत्र में विगत एक महीना से लेके हथिया के आतंक बढ़ती गेल बा। हथिया बस्तियों गांव में खेतो बारी में प्रवेश करते रलक पाछे स्थानीय बासिंदा सुरक्षित और त्रासित बनल बाटे। हथिया से किसान उपकरण में समेत ऐलक लगायल अन्न बाली मसमत क्षति पुगैती आयल स्थानीय वासिंद्र बताइल बाटे। लम्बा समय से हथियार के आवत जावत नै रोकल पासे किसान उक्रा आपन मेहनत में लगायल बाली जोगैना रात भर जागरण बैठे पर्ना अवस्था आयल बा। हथियार के आतंक के कारण स्थानीय के जनधन के सुरक्षा ऊपर समेत जोखिम बढ़ती रहल कहती स्थानीय वासी संबंधित निकाय संगे तत्काल आवश्यक पहल करना मांग करगिल बतागिल बा। विशेष करके बस्ती क्षेत्र में हथिया प्रवेश में समेत रोक प्रभावकारी उपाय अपनाना के साथ ही छिटी हुई धान बाली के उचित मूल्यांकन करके किसान हुकरण राहत और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए पर्ना स्थानीय हुकर मांग करने बाट। स्थानीय वासी हथिया नियंत्रण तथा मानव वन्य जंतु द्वंद न्यूनीकरण के लाख संबंधित वन कार्यालय स्थानीय तह तथा और सरकार वाला निकाय हुकरण के तत्काल ध्यानाकर्षण करागिल बा। कर्णाली प्रदेश सरकार से प्रदेश सभा के दूसरे कार्यकाल के 8वां अधिवेशन अंत्य करना सिफारिश निर्णय करल बा। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में आज बैठक मंत्री परिषद के बैठक से 2083 साल साउन 29 गते सोमवार रात के 12 बजे से लागू न करके प्रदेश सभा के 8वां अधिवेशन अंत्य करना प्रदेश प्रमुख एकराज जोशी समक्ष सिफारिश करना निर्णय कर सकल बा। सरकार से इस निर्णय संगे प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन अंत्य हुना उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता कल्याणी खड़का जानकारी दिल बाट। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीका एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटना का घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौ र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
5: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
4: अब किन टाढा जानु, सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
5: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
4: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
5: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
4: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
5: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
3: ECG सेवा,
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
2: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
4: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। प्रधानमन्त्री बालन शाहसे रसुवा के भोटेको सिलदिया माइल बार पाछे की पुनस्थापना के लाग स्रोत के कोनो फे कमी हुई नै देना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाट प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिसँगै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद के कार्यालय समेत छलफल गर्दी पुनस्थापना केलक। सरकार अपनाउकनसँगै हुइलक तथा दात्री निकाय से उपलब्ध कैलक स्रोत साधन प्रयोग गर्न तयारी करल बटोलेबाट उहाँ बार प्रभावित स्थानीय तहके जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा उहाँकी मनोबल उच्च धरकलाग सहयोगी हुन विश्वास व्यक्त गर्नबाट छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री शाह प्रभावित क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिहरूसँग नै विपदकै बेला संघ प्रदेश हो स्थानीय तहका बीच तत्काल समेत समन्वयमा समेत बात गर्दै सुन्न पाके खुशी लागल बटोलेबाट प्रधानमन्त्री शाह सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जत्रा हाली हुई सड़क सञ्जाल पुनस्थापना गर्न करके निरन्तर काम गरिरहल उल्लेख गर्नबाट उहाँ सड़क सञ्जाल सञ्चालनमा आयल सँगै प्रभावित समेत पूर्व अवस्थामा स्वस्फूर्त लौटैना सहज विश्वास व्यक्त गर्नबाट छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री शाह अपनाउकरणकै शुरूआतमा नै लदिया तटीय क्षेत्रमा रलक बस्ती जोखिममा रहल विषय उठैती आयल बटोलबाट उहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हुक्रा फे जस्तो अब रसुवा बाढीसे प्रभावित तटीय क्षेत्र फेरसे बस्ती बैठैन सम्भव नै हुन बटोटी आयलबाट एकलक सरकार प्रभावित क्षेत्रके लगहके मनौ सुरक्षित स्थानमा बस्ती बैठैन करके तयारी शुरू गर्लक जानकारी दिलेबाट। सड़क डिभिजन कार्यालय बैतडीसे टोकल म्याट भित्तर काम सम्पन्न नैकरिया दस्थो निर्माण कम्पनी संगे ठेक्का सम्झौता रद्द करलबा। कार्यालयसे सार्वजनिक सूचना जारी गर्ती महाकाली मध्य पहाड़ी तथा खोटपे चैनपुर लगायत के राजमार्ग अन्तर्गत के सड़क निर्माण स्तर उन्नति ओ मर्मत सम्बन्धी ठेक्का रद्द करलक। डिभिजन प्रमुख किरण सुवेदी बटवैलीबाट रद्द करल ठेक्का तथा निर्माण व्यवसाय के समेत विवरण अनारखुली खोटपे पाटन समेत सड़क खण्ड अन्तर्गत सड़क किनारा के संरचना मर्मत ठेक्का पहिलाको न्यून सहारा कन्स्ट्रक्सन डलडुरा खोटपे भित्थान चैनपुर सड़क खण्ड के स्तर उन्नति तथा पुनरुत्थान को समेत पुनरुत्थान के जयलक्ष्मी निर्माण सेवा बझाङ खोटपे समेत चैनपुर सड़क मर्मत के प्रभास कंस्ट्रक्शन पाटन बैटरी रलक बटागिल्बा ओसा के बिठट चैनपुर सड़क खण्ड के सतह विशेष मरमत के ठेक्का पायल श्री नरेन्द्र निर्माण सेवा बझाङ मध्य पहाड़ी राजमार्ग अन्तर्गत के सड़क सुरक्षा कार्यालय कुल गाड़े निर्माण सेवा बैटरी खोटपे चैनपुर राजमार्ग में सुरक्षा सड़क सुरक्षा काम के प्रभास कंस्ट्रक्शन उस्तकर सात वर्ष गोकुलेश्वर दारचुला राजमार्ग के सड़क खण्ड में ये काम में कुलगढ़ी निर्माण सेवा हो समेत विठट चैनपुर खण्ड के अवरत सड़क सतह में विशेष मरमत के ठेक्का पायल प्रभास कंस्ट्रक्शन से समझौता फिर समेत रद्द करल डिवीजन प्रमुख सुविधी बटोली बाट कंचनपुर के महाकाली लदिया में बहके एकजाने बेपत्ता हुई बाट दोधारा चांदनी नगर पालिका चार मालिका टोल के 50 वर्षीय जीत दमाई सोमवार के बिहान के लदिया में बहल पासे बेपत्ता हुई के हुई। प्रहरी के अनुसार बिहान के करीब 9:30 बजे महाकाली लदिया के टापू में जाके टर्न क्रम में दमाई लदिया के समेत तीव्र बहाव में समेत पुहलक पटवागिल बा घटना लगते वहां के खोजी केला के नेपाल प्रहरी हो सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली परिचालन करके जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र थापा जानकारी दिले बाट खोजखबरमा एक घड़ी फिर से विश्राम विश्राम पाछे फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
3: आँखा का रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू सम्पर्क नम्बर 98484-57875।
5: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जार सेक्ल
6: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो निकरत का कैन हो का
5: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हन कबु कहुर घुम जाए त था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
10: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
9: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
10: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
9: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 98-688-0008 र 98-25-67-72।
4: विश्राम पाछर फिर से स्वागत बा कैलाली मा प्रदेश सरकार के मापदंड अनुसार दर्ता हुईल स्तरीय होटल अब रात के 12 बजे सम संचालन कर पैना हुईल बा यागे होटल तथा व्यवसाय रात के 10 बजे भीतर बंद कर पर्ना व्यवस्था रहलकमा होटल व्यवसाय संघ कैलाली जिला प्रशासन कार्यालय और जिला प्रहरी कार्यालय बीच हुईल छलफल पाछे स्तरीय होटल के लाख संचालन के समय 2 घंटा थप करना सहमति हुईल बा लाओ व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय में स्तरीय होटल के रूप में दर्ता हुईल होटल रात के 12 बजे सम ग्राहक उपरांत सेवा देह पैना कहलवा होटल व्यवसाय संघ कैलाली के अनुसार जिला में ऐसी होटल के संख्या करीब 100 रहल बता गिल बा कैलाली के 3 स्थानीय तह में जापानीज इन्सेफ्लाइटिस विरूद्ध के खोप अभियान संचालन होना हुई बा जापानीज इन्सेफ्लाइटिस के संक्रमण दर बढ़ती गई पाछे स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के समेत असोज 1 गते से लेके खोप अभियान संचालन करने लग गए हो स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के प्रमुख रमेश कुंवर से धनगढ़ी उपमहानगरपालिका लम्कीचुहा नगरपालिका और घोड़ाघोड़ी नगरपालिका में अभियान संचालन करने जानकारी करा गिल बा जापान में आगामी असोज में हुना 20 संस्करण के एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के लाख नेपाली पुरुष क्रिकेट राष्ट्रीय टोली घोषणा कर गिल बा नेपाल ओलंपिक कमिटी से दीपिंदर सिंह एरी के कप्तानी में 15 सदस्य टोली घोषणा कर लख हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से आज हिंदू नारीकरण के महान त्यौहार हरिताली का तीज पर्व महादेव की पूजा आराधना करके मनाई थी टीकापुर में हथिया नागरिक उपकरण सतैती हथिया रात रात की गांव पैती रहल पाछे स्थानीय वासी त्रासित बार पाछे पुनस्थापना के लाख स्रोत की कमी नहीं हिना प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धता ओ कर्णाली प्रदेश के दूसरा कार्यकाल के 8वां अधिवेशन अंत्य करना सिफारिश लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर त्रय और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा में खोज खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम सुनते विराम राम
11: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ
12: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ
11: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
13: हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदायकै महान पर्व अटवारीकै सुखद अवसरमा समस्त औडावासी दादु भैया ओ दिदी बहिनी हुकनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यकै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरती जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली
14: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
15: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
14: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
15: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
14: अब त म ढुक्क
16: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
15: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: सुरक्षित जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।